0: परवीन भट्ट, बहुत मेहरबानी आपकी। जी हाँ, जो आपने कहा वो मैं ज़रूर आजमाऊंगी इंशाल्लाह। यहाँ पर सोनल मोदा है क्या? ये मेरे ख्याल से पहले मॉर्निंग शो के लिए आपका मैसेज था। और अब कुछ और भी मैसेजेस हैं। एक एक मंजू डागर, परवीन जी टू ऑल द, जब आप मेरा नाम लेकर देते हैं ना मैसेज, तो फिर मुझे बाकी के जो है ना प्रेजेंटर्स के मैसेजेस पढ़ने नहीं पड़ते। आप मेरा नाम अगर लिख देते हैं तो फिर मुझे पता है कि ये मैसेज मेरे लिए ही है। थैंक यू मंजू डागर। चिराग पटेल कराटीना से, रूपल कहते हैं स्पेशल रिक्वेस्ट टुडे, माय डैड्स 84th, माय गॉड 84th बर्थडे, द सॉन्ग इज खुदा कभी ना करे गम से हम कनार तुझे। रूपल, बिकॉज आई लव द सॉन्ग, मुझे बड़ी खुशी होगी ये आपकी फरमाइश पूरी करने के लिए। आपके पिताजी का नाम भी बताइए रूपल, इफ इज हियर और इन इंडिया वेयर इज ही, तो हम उनको अच्छी तरह से विश तो करें। ये नहीं कि आपका, आपके डैड, उनका नाम भी होगा। और सना, उन्होंने मुझे एक तस्वीर भेजी है बकरे की टांग की। ओके, प्रणाम नमस्कार वंदनीय परवीन जी, हम जुड़ चुके हैं बेमिसाल अंदाज के साथ, सो ग्लैड टू हैव यू ऑन बोर्ड। ये देखें,
1: कोई मुझसे पूछे कि तुमने जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या किया है, तो मैं कहूंगी इंतजार, बहुत ज्यादा इंतजार, कभी किसी दुआ के कबूल होने का, कभी किसी अपने के लौट आने का, कभी किसी दरवाजे के खुल जाने का, कभी किसी दस्तक का, कभी नींद आने का, और कभी माजी के ख्यालों से पनाह मिल जाने का। शुक्रिया, सुबह का प्यारा सलाम, सलमा आहमद किसुमु।
0: सलमा, आई लव दैट। इंतज़ार में ही आधे से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर जाती है। आपने बताया किस किस चीज़ का इंतज़ार, इंतज़ार उस दरवाज़े के खुलने का, इंतज़ार किसी के लौट आने का, इंतज़ार, तोबा तोबा तोबा। सलमा, वेरी ट्रू, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पर हैं प्यार अली।
2: गोविंद जी, एक तो सूरत प्यारी, ये गाना फिल्म क्या वल्ला क्या बात है का है, 1962 की मूवी है, जिसको मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने गाया है, और जिसको प्रेम धवन ने लिखा है, और जिसकी धुन रोशन लाल ने बनाई है। ये गाना बहुत अच्छा लगा, सुनाने के लिए आपका शुक्रिया।
0: बहुत अच्छे, इतनी इन्फॉर्मेशन आप देते हैं, हम बड़े आभारी हैं आपके प्यार अली। मिस्टर एमएल विश्वकर्मा इन इंडिया, हैप्पी ईद जुहा एंड कोट ऑफ द डे, Knowing your own minus point is the biggest plus point on the life of the life of your life. कहना होता, कहते हैं कि knowing your own minus point, जहां पर आप

की खामियां हैं, जहां पर आपकी कमियां हैं, समिन उनका जान लेना बहुत जरूरी है, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपकी जीवन का। शुभ प्रभात कहा है विश्वकर्मा, दिनेश पोपट, नमस्कार प्रवीण जी, वेलकम टू द स्टूडियो डूइंग द शो टू एंटरटेन अस डिस्पाइट बीइंग अनवेल, आई विश यू वेल एंड स्पीडी रिकवरी, अल्लाह गिव्स यू स्ट्रेंथ टू कैरी ऑन, दिनेश पोपट फ्रॉम सिडकप लंदन। दिनेश थैंक यू सो मच इवन फॉर येस्टरडे, उन्होंने मुझे बताया था कि क्या कुछ खाया जा सकता है ये जो है ना फ्लू को नीचा दिखाने के लिए। अच्छा यहाँ पर है, माई डैड्स नेम इज रजनीकांत काना कारिया कारिया रजनीकांत कारिया, ही लिव्स इन लंदन। अच्छा तो रजनीकांत कारिया आपको 84th बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो, हमारी पूरी टीम ऑल द प्रेजेंटर्स विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे रजनीकांत। अच्छा थोड़ी देर में मैं वो गाना भी निकाल के आई मीन हाँ आपके लिए सुनाती हूँ।

0: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
1: वैसे समीन आगे मैंने आपको खबर देनी है अरुण कुमार तिवारी की. एक फरमाइश भी है जो कि है रजनीकांत कारिया के लिए, वो थोड़ी देर के बाद. लेकिन इससे पहले रंजन विनोद, आपने सबको नमस्कार किया है, कहते हैं आपका इंतजार कर रही थी आज भी. गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर लिसनर्स. रंजन विनोद कहती हैं, सना, अ माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट डजंट वर्क इफ इट्स नॉट ओपन. बिल्कुल बिल्कुल. और चंद्रिका वासंत गोसाई, आपने कहा है कि वेलकम परवीन जी, टेक केयर, वी आर रियली एंजॉइंग द प्रोग्राम. अमीर अली राणा, परवीन जी ईद मुबारक. समीर, कल मेरी ईद तो चारपाई में गुजरी है, बेड में. सारा दिन जब लोग मजे कर रहे थे, एक दूसरे के गले लग रहे थे, एक दूसरे को ईद मुबारक के तोहफे दे रहे थे, और समीन मैं पड़ी हुई थी चारपाई में. ऐसा भी होता है, हाँ, ज़रूरी तो नहीं कि हर फेस्टिवल आप इंजॉय करें, है ना. अच्छा परवीन जी, ईद मुबारक टू यू एंड ऑल द बेमिसाल अंदाज. लिसन, बी वेयर ऑफ दीज वायरसेस. मैं कहता हूँ ये बहुत ज़्यादा वायरस ख़राब हैं. उफ अमीर अली, क्या करेंगे, अल्लाह मदद करता है. ह्यूमंस इन्वेंटेड मिरर्स देन यूज्ड फिल्टर्स बिकॉज मिरर्स ऑलवेज शोड द ट्रूथ. अब समझ, जो फिल्टर है आपको पता ना, मोबाइल पे लगा, आप जो चाहें अपनी शक्ल को बदल सकते हैं. अगर आपने करीना कपूर बनना है वो भी बन सकते हैं. बस ये है आपके फोन का कमाल, स्मार्टफोन का. ये कहा था लखबीर आपने, और उनकी जो समिन, ये जो है अरुण कुमार तिवारी, मई 21st 21 मई को ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे. समझ, कोई आसान काम नहीं है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाना. पहले भी ट्राई किया, नहीं कामयाब हुए, फिर पहुंचे, फिर मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या.
2: इट्स 10:23.
3: When a restaurant is good for dinner, it's not good for kids. When a restaurant is a fun hangout for kids, it's not good for the relaxed couples enjoying their meal. Well, finally, here is a restaurant for all. The Potbelly is for families, kids parties, kitty parties, a gathering for group of friends, and also your corporate lunches over meetings. With a menu that's fusion, Indian, and also pizzas. Opens on Tuesdays to Sunday from 11 a.m. to 11 p.m. The Potbelly on Matunda Lane, Westlands. Finally, a restaurant for all.
4: Back to Kenya's premier Asian mix. East FM.
0: We've got your favorite song for every moment because we love you like that. East FM, Kenya's premier Asian mix.

और सामिन, जैसे कि मैं कहती हूँ कि जो संगीत होता है वो कभी पुराना नहीं होता। जो आपने जवानी में सुने थे गाने, वो आपके जीवन के साथ जुड़े हुए, गहरा ताल्लुक है। वो आवाजें, वो सुर, वो संगीत, वो मेलोडीज, जब आप बड़े हो रहे थे कैरन वाइट भी आप सुनते थे, कर्क विलम भी, अब आपने अ नाइट ऑफ सोल, जैज, रोमांस, कब आप कर सकते हैं ये सब का अनुभव। समय 31 मई इतवार का दिन है, सारिद सेंटर एक्सपो हॉल है, और ये वन नाइट ओनली है। कॉन्सर्ट का नाम ही वन नाइट ओनली है। अनफॉरगेटेबल हिट्स पुराने दौर के, मतलब सैक्सोफोन आर्टिस्ट हैं आपके साथ, और क्या चाहिए। आप जाके सुनिए, देखिए, और अपने साथ घर वालों को भी लेकर जाएं। ticketa2.com पर आप कर सकते हैं बुक अपने टिकट्स, अभी करवाएं वरना बहुत जल्दी टिकट बिक रहे हैं, ये हमने देखा है। अब प्यार अली भाटिया ने भी कहा है कि हम विश करते हैं हैप्पी बर्थडे जो 84th मना रहे हैं, और वो हैं रजनीकांत कारिया। रजनीकांत कारिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। और यहाँ पर जैश फ्रॉम वोई, आई कैन हियर योर वॉइस इज हैवी विद फ्लू, गेट वेल सून। बहुत शुक्रिया जैश फ्रॉम वोई। और अमीर अली राणा, मुझे बहुत अफसोस है कि आप ठीक नहीं थे, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इफ नीड बी टेक टू वेकेशंस एवरी 6 months एंड रिकू योर सेल्फ। हाँ, हो सकता है समित, हॉलीडे पे हॉलीडे करें, मे भी हो सकता है कि ऐसे बार बार ना हो, आपका गला ना बैठे। पर एक्चुअली जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ गला बैठेगा ही। ओके, एंजॉय योर लाइफ, यू नीड टू, थैंक यू सो मच अमीर अली राणा। तो सामिन, अभी रजनीकांत जो कारियाँ हैं उनके लिए ये गाना रूपल ने चुना है, आइए उनको कहें मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।

और उम्मीद है रूपल आपने रिकॉर्ड करके अपने पिताजी को जरूर भेजा होगा ये गाना। और समझ इसी के साथ मैं अब चलती हूँ वो पहली खबर। अरुण कुमार तिवारी 21 मई को माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ गए, बड़े खुश थे और क्योंकि उनके साथ भी थे लोग और ऐसे जश्न मनाया ऊपर पहुंचने का। फिर अचानक समय चोटी उबूर करने के बाद हिलरी स्टेप है ऊपर पहाड़ के ऊपर एक जगह है, वहां पर पहुंचे हैं तो इनकी मौत हो गई। इमेजिन 53 साल तिवारी 53 years के थे। 53 साल तिवारी के खानदान ने क्या कहा है, कहते हैं कि हमें उनकी मैयत को वापस नीचे नहीं लाना, पहाड़ पे ही रहने दो, नहीं लाएंगे, वहां छोड़ दिया जाए इसलिए कि उनको पहाड़ों से प्यार था, इतना लगाव था पहाड़ों से कि चोटी देखे माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जाके दम तोड़ दिया, इतना उनको लगाव था, ऐसे जुनून था पहाड़ों का, इसलिए हम चाहते हैं जहां वो पसंद करते थे, जो मकाम उनको बहुत दिल के करीब था उनके, वहीं उनको छोड़ दिया जाए। अच्छा समीन ये तो हो गया, अब अगली जो खबर है समीन वो भी माउंटेनियर्स की है, खास तौर पे मर्द। अभी आपने मुझे बताना है कि ये क्यों होता है और कई बार हुआ है, एक बार नहीं, वो जब मैं बताऊंगी आपको फिर आप गेस करेंगे कि व्हाट कैन बी द रीजन।

0: तो समीन बात हो रही थी पहाड़ों की एंड माउंटेनियर्स की. माउंटेनियर्स जो के पहाड़ों को उबूर करते हैं, को पैमा. तो समीन पहाड़ों को उबूर करने वाले मर्द, ये देखें आप, मैं आपको खबरें सुनाती हूँ तो आप देखेंगे कि पुरुष क्यों ऐसा करता है. तो समीन जवाब मिला चंद माह पहले ऑस्ट्रिया से, लड़का और उसकी दोस्त, ऑस्ट्रियन दोनों लड़का लड़की जवान पहाड़ों पे एडवेंचर के लिए इकट्ठे निकलते हैं. मगर जब हालात और मौसम बदल जाता है तो लड़का क्या करता है, लड़की को अकेला छोड़ गायब हो जाता, आगे चल निकलता है. लड़की चल बसती है, अकेले उसको छोड़कर. समय शदीद सर्दी है, बर्फ के तूफान है, छोड़ के पुलिस पकड़ती है माउंटेनियर को और इसको अदालत लेके आती है. और सजा कैसी है, सजा देती है सस्पेंडेड सेंटेंस. हालांकि मैन स्लॉटर का इल्जाम लगाया गया था लेकिन उसको सस्पेंडेड सेंटेंस, यानी वो सर्व ही नहीं करेगा. जालिम के पास, इस लड़के के पास फोन था. लड़की बारहा टेलीफोन कर करके उसे कह रही थी कि मुझे आके मेरी मदद करो, मदद करो. वो नहीं, उसने उसकी कॉल्स नहीं उठाई. आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, ये कहकर गया था कि यू आर वेरी स्लो, यू आर टू स्लो फॉर मी. कहते हैं एक बार पहले भी इसी लड़के ने, ऑस्ट्रियन, एक और गर्लफ्रेंड को लेकर गया माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए और रास्ते में उसे भी छोड़कर निकल गया था. समय 1893 में एक स्कॉटिश लेखक ने कहानी लिखी कि कैसे पति पत्नी को मारने के लिए स्विस एल्प्स ले जाता है. क्यों समय, मुझे आप बताएं कि ये पहाड़ों में क्या है, क्यों ये मर्द इस तरह से करते हैं. एक तो माउंटेनियरिंग में क्या है, आपको लगता है कि ये इसी वजह से हो रहा है. माउंटेनियरिंग है ही ऐसी बात, ऐसी स्पोर्ट है कि आप समहाउ, आपकी जजमेंट को इन्फ्लुएंस करती है. आपको क्या लगता है क्यों ऐसा होता है कि जब पहाड़ दुनिया से दूर, तो एक मर्द क्यों हैवान बन जाता है. 07011106106 है किसी के पास कोई वजह, खुद गैस ही कर सकते हैं हम.
1: East FM, Kenya's premier Asian mix. This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
2: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of The Star, right there where you are. 100,000 copies of The Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper. Because smart people read The Star.
3: Kenya's premier Asian mix means always playing the very best.
4: East FM. Kenya's premier Asian mix.

0: चिराग पटेल ने बड़ा इंटरेस्टिंग लिखकर भेजा हमें जवाब. कहते हैं पैनिक, जब आप पहाड़ उबूर कर रहे हैं तो खौफ और डर पैदा हो सकता है. सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के किक्स इन. पीपल मेक सेल्फिश चॉइसेस सिंपली टू सेव देमसेल्व्स. कहते हैं जब पैनिक हो, डर हो, तो फिर जो है ना आपने अपने आप का बचाव करना है. वो जो हिस है ना आप में इंस्टिंक्ट, वो उजागर हो जाते हैं. मैंने अपना बचाव करना है. द लीडर डिलेमा, कि मैं लीडर हूं. ठीक है, ये एक डिलेमा है, समझ, ये एक मुम्मा है. द लीडर डिलेमा. प्रोसिक्यूटर्स आर्ग्यूड द मेल पार्टनर एज द मोर एक्सपीरियंस क्लाइमर. द एक्सपीरियंस क्लाइमर्स मिसजज अ कंपेनियंस लिमिट्स, पुशिंग देम बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटीज एंड फेलिंग टू टर्न बैक इन टाइम. कहते जब ये मामला अदालत में गया, प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि ये इसके पास बहुत अनुभव था आदमी के पास, लेकिन उसने अंदाज़ा नहीं लगाया कि जो लड़की उसके साथ है उसका कोई तजुर्बा नहीं है, और उसको पुश करने में समय उसकी जान ले ली उसने. इम्पेयर्ड जजमेंट, मतलब कि सही फैसले ना कर पाना. इम्पेयर्ड जजमेंट लाइक कोल्ड एंड फटीग सेट इन. क्लाइमर्स कैन एक्सपीरियंस हाइपोक्सिया. समझ, कहते हैं कि ठंडी के साथ जो पहाड़ चढ़ने वाला है ना उसको हाइपोक्सिया हो सकता है. उसकी जजमेंट, फैसले लेने की जो कुव्वत है समझ, उस पर असर करता है. एंड कॉज देम टू मेक इरेशनल डिसीशंस, गलत फैसले कर बैठता है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही उसके दिमाग को. सच एज लीविंग अ वीकेंड पार्टनर बिहाइंड टू फेच हेल्प. हो सकता है मदद के लिए गया हो लेकिन एक कमज़ोर औरत को अकेले छोड़ देना. ये काफ़ी ज़्यादा समिन वजूहात हैं जो कि शायद साइकोलॉजिस्ट की मदद से ली गए हैं, बताया गया है ये सब.
1: East FM, Kenya's premier Asian mix.
2: East FM.
3: East FM.
1: This is one night only. One night only. One stage, one queen, three kings. 31st May at the Sarat Expo Hall with Karen White. Kirk Whalum. Bien and Alakiba. Tickets are going like hotcake. Early bird already sold out. Gallery seats 7,500. Middle seats 9,500. Front row 12,500. Go now to TicketYetu.com and grab yours before they run out. Visit TicketYetu.com. With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Mark Gittel.
4: With Stanbic Vehicle and Asset Financing.
5: Tension remains high at Utumishi Girls in Nakuru County as parents continue flocking to the school seeking information about the safety of their children. At least 16 students have been confirmed dead, while scores of others are receiving treatment at various health facilities across Nakuru County following a fire that raged one of the school dormitories earlier today. Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen, Education Cabinet Secretary Julius Ogamba, Education Principal Secretary Julius Bitok, and Nakuru Governor Susan Kihika are held in a crisis meeting at the school. The Law Society of Kenya has condemned plans by the United States government to set up an Ebola quarantine and treatment center in Kenya for infected American citizens. In a social media post, LSK President Charles Kanjama urged the Kenyan government to reject the request, saying Kenya should instead strengthen measures to prevent Ebola cases from entering the country. He urged that treatment and isolation facilities should be established closer to the outbreak epicenter in eastern DRC or western Uganda. Leaders have been urged to avoid personalizing politics and instead focus on issue-based campaigns to promote unity and national cohesion. Former Nyeri Town Member of Parliament Ngonjeri Wambugu warns against tribal rhetoric, noting that diverse communities live across different regions and such remarks could easily fuel division and chaos. UGM party leader David Maraga has criticized the Ministry of Health for failing to disclose specific details regarding an alleged plan to fly Ebola-exposed individuals from the United States to Kenya for treatment. In a statement, Maraga warned that the arrangement compromises national sovereignty and places the public at risk. The former Chief Justice further called for immediate parliamentary oversight and full transparency before any steps are taken. Establishing a quarantine facility in Kenya could lead to a serious health crisis as concerns grow over the proposed U.S. Ebola treatment center for citizens exposed in the Democratic Republic of Congo outbreak. This is according to infectious disease expert Dr. Samuel Njenga, who says Kenya's health system is already stretched by multiple ongoing public health challenges and should prioritize its own preparedness and response capacity amid regional Ebola risks.
3: Strategically, you would want only first to be able to handle what you could consider your problem. Because when it comes to infectious diseases or communicable diseases or any public health threat.
4: East FM News. Stanbic Vehicle and Asset Financing. Support your ambition with zero processing fees and flexible terms. Email carloan@stanbic.com. TNCs apply. Regulated by CBK.
6: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
7: Bemisaal Andaaz with Parveen Atom.
0: So, Samin, wo to hum baat kar rahe the pahadon ki. To aapko yaad hai jab wo bahri jahaz nikle the. लोग बहरी जहाजों पे इंडिया पाकिस्तान जाया करते थे तब भी आपने किस्से सुने थे ना कि अचानक कोई गिर गया है जहाज से अचानक वो डूब गया है अचानक वो मर गया है तब भी लोगों ने कहा था कि ये ऐसा जानबूझकर करते हैं ले जाते हैं मियां बीवी को या बीवी मियां को ले जाए और उसको उसका वहां खात्मा कर दे जिंदगी आसान होती है लेकिन दिखावा

आप तीन से रह जाएं, आपने 100 बनाने हैं, 97 बनाकर आप रह जाएं, दिल नहीं फट जाएगा आपका रिग्रेट से? कहां हुआ है बताती हूं।

0: और सभी ये थे गीता दत्त और मुकेश. अब चलते हैं राजस्थान रॉयल्स. समय राजस्थान रॉयल्स के मैं हमेशा कहती हूँ ना, ये जो मारूफ बल्लेबाज हैं वैभव सूर्यवंशी, अ सेंसेशन है. उनके साथ बुरा हो गया. क्या सबसे बड़ा रिग्रेट होगा समय 3 रन से उन्होंने सेंचुरी मिस करती है. समय ये सेंचुरी फास्टेस्ट होती अगर ये बना लेते T20 की. 3 रन से मिस कर दी 97, सिर्फ 29 गेंदों में 29 इन 29 बॉल्स. आप बताएं मुझे कि कैसा ये शानदार खेल था. तो समीन बस ये है कि 12 छक्के एक लगाना समीन कंपेटिटिव में बहुत मुश्किल होता है. 12 छक्के और 5 चौके बनाए. कमाल है समीन. फास्टेस्ट आईपीएल की होती फास्टेस्ट सेंचुरी. अगर 3 रन्स एक और हो जाता ना समीन, तो 3 रन्स और हो जाते, बहुत ही अफसोस रहेगा. अच्छा जैनुल मोहम्मद बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन कर लिया है. चिराग पटेल, रमेश हरिया को मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे फ्रॉम काराठीना. कमाल है. और मनर पटेल, हैव एन ऑसम डे ऑल ऑफ यू, बहुत शुक्रिया. और यहाँ पर हैं ये जो है किसी ने कि किसने कहा है, मुझे लगता है कुछ जमील है, जमील फ्रॉम मुठवापा. वो कहते हैं सॉरी परवीन, रेखा वॉज पुश्ड इन द रिवर. वॉज इट रेखा? सम वन ऑफ आवर लिसनर्स सेड कि रेखा वॉज पुश्ड इन, सो आर यू करेक्टिंग हर और हिम? जमील फ्रॉम मुठवापा, गुड टू हियर फ्रॉम यू. अच्छा यहाँ पर है लखबीर, इन क्रिकेट द यंगेस्ट प्लेयर हु वांटेड टू ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ क्रिस गेल, वैभव सूर्यवंशी. सब क्या इसकी तारीफ करें, इसने तो बड़े बड़े को पछाड़ देना है, ये इसने करना है वैभव सूर्यवंशी ने. सलीम मेहर भी आए हैं, क्या कहते हैं?
1: अस्सलाम वालेकुम प्रवीण जी, सलीम मेहर फ्रॉम लंदन. डोंट बी बेगर ऑफ लव, be a giver of love. Beautiful people are not always good, but good people are always beautiful. Good morning Purunji to you and all your lovely Bear Misal listeners, and our duas and prayers are with you for a speedy recovery. I think I've got the same issue what you have, but inshallah you'll get much better and much quicker. Khuda hafiz.
0: सलीम मेहर, मैं आप दोनों के लिए दुआएं करती होती भी, पर होता है, बार बार होता है, हर एक किसी के साथ होता है ये, है ना.
2: नमस्कार प्रवीण जी, आपको और सबको. यहाँ तो आज बकरीद मना रहे हैं, पर आप अभी तक ठीक नहीं हुए, बड़ा बुरा लग रहा है, ये फ्लू है ही ऐसा. अच्छा जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है वैभव सूर्यवंशी, जो कि राजस्थान रॉयल्स का प्लेयर है, और 3 रन से उसकी सेंचुरी रह गई, तो यही है बात. और परवीन जी अच्छा बाद में बोलती हूँ.
0: कीजिएगा दूसरा मैसेज भी करें मंजुला विश्वकर्मा, अगर आपने वैभव के बारे करना है वो भी हो सकता है. समय जितना आप इसको देखेंगे ना, इस लड़के पर मैंने शुरू में कहा था, और शुरू से ही इसने करना शुरू कर दिया है, ब्रेक करने शुरू कर दिए रिकॉर्ड. लेकिन मैंने कहा ये क्या लड़का है, क्या शानदार प्लेयर है, इसने कोई, मुझे नहीं लगता कोई रिकॉर्ड ये छोड़े. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं सचिन से भी आगे निकल जाएगा. अभी ये क्या 15 साल का है.

0: अश्विन दोषी इसको दीवार में चुना जा रहा है.
1: ये आइकॉनिक गाना है परमजी फिल्म अनारकली का.
0: राइट राइट.
1: ये वो दीवार में हो रहा है.
0: हाँ.
1: और ये सेम पार्ट है. दूसरा पार्ट था वो हैप्पी गाना था. सेम गाना.
0: रियली?
1: यस. This song was on
0: two versions.
1: Yes.
0: अच्छा.
1: तो ये set part है. The end of the story while Narkali is being built in behind the walls. She's prisoned. Yes.
0: क्या बात
1: है. Yeah, iconic गाना है. बहुत popular हुआ था. और Narkali मूवी भी परवीन जी ब्लॉकबस्टर हुई थी.
0: और अश्विन ये मंजर तो जहन से जाता नहीं था. जब हमने फिल्म देखी तो ये मंजर इतना दुख पहुंचाता रहा कई दिन.
1: यस यस. और आपको मालूम है ना Narkali इज नॉट अ ट्रू स्टोरी.
0: कहते हैं कि नहीं था और ये तो थी नहीं कोई मेड थी नहीं.
1: बनाई हुई थी स्टोरी.
0: अब ये हर चीज को उठा के कहते हैं ऐसा नहीं हुआ था. अब ये जब हीर रांझा जैसे आते हैं सस्सी पुन्नू कहते हैं सस्सी पुन्नू भी नहीं थे.
1: अच्छा तो अभी
0: ये अब क्या करें.
1: जो मुझे मालूम है वो
0: हाँ हमने तो यही करना है.
1: जो करना है कोई क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है कि इधर उसको दफनाया गया था.
0: हाँ, कुछ
1: उसका कोई मॉन्यूमेंट नहीं है कि
0: बिल्कुल
1: उनकी कब्र जो हो सकती है वो भी नहीं है कुछ नहीं है. तो एनीवे बट मूवी वाज परवीन जी इट वाज अ ट्रीट. श्री रामचंद्र का म्यूजिक और राजेंद्र कृष्ण शैलेंद्र हजरत चौधरी सभी ने गाने लिखे थे.
0: और अश्विन आपने सोचा है कि वो राजा महाराजाओं के दरबार में तो हैरम था तो वहाँ तो सच्चे प्यार के लिए इस तरह का जतन करना तो फिर अनहर्ड ऑफ था क्योंकि वहाँ तो इट वाज अवेलेबल फ्रीली ना.
1: यस यस.
0: प्यार की तो सच्चे प्यार की तो कोई जरूरत ही नहीं थी. हैरम थे.
1: हैरम तो कहा थे
0: जी.
1: लेकिन बट द किंग हैड ए फेवरेट
0: वाइफ.
1: कॉन्क्यूबाइन नहीं. वाइफ राइटफुली मैरिड. Rightfully married.
0: अच्छा.
1: Like Salim की वाइफ थी नूरजहान.
0: हाँ.
1: वो
0: थी एक वो थी और हैरम भरा हुआ था वाइफ से.
1: या हैरम तो होएगा.
0: हाँ.
1: वो सभी मुगल किंग्स वगैरह सभी रसिया थे.
0: हाँ. बिल्कुल.
1: या ऐसी स्टोरी थी
0: जी. थैंक्स सो मच.
1: थैंक यू
0: अश्विन. अच्छा समीन ये बात कर रहे थे अश्विन दोषी और हम आगे बढ़ते हैं. क्या करते हैं हम बात करते हैं किससे. मनर से. मनर पटेल आए हैं लाइन पर.
2: हेलो गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल सलाम वालेकुम जय श्री कृष्ण जय स्वामी नारायण. केम छे ईस्ट एफएम लिसनर्स. हवे वात एम छे के रमेश हरियानी बर्थडे छे. हैप्पी बर्थडे हैव अ गुड डे एन्जॉय अ लॉट विदाउट अस. हवे आपने खबर छे के कोई मानस सीक्रेट राखे के मारी बर्थडे छे के मैरिज एनिवर्सरी छे कारण के आपने एनी पासे कई मांगी है केक मोड़ू मीठू करवानी वात. हवे रमेश हरियाए आपने कहू नहीं कि आज मारी बर्थडे छे. चलो कदाच कोई ना के पण आपणे तो जाण्यू ईस्ट एफएम द्वारा तो हैप्पी बर्थडे हैव अ गुड डे एंड एन्जॉय योर डे. थैंक यू मनर पटेल किसुमो.
0: बहुत अच्छे. ओके मनर पटेल को थोड़ा गुस्सा भी है थोड़ी खुशी भी है. और शब्बीर अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शहजादी साहिबा just tuned in salam to the listeners of bemisal thank you shabir ahmed jatinder wo kya kehti hain aapko awaaz suna do
3: hello pg welcome sare namaskar sare nu good health parmatma deve mere sharir ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ, ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਆਹ ਗਾਣਾ ਮਿਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੀ ਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਰਮੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।
0: ਸ਼ਰੀਆ ਕੇ ਲੀਏ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਆ ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਗਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਤਿੰਦਰ। ਮੈਨੀ ਮੈਨੀ ਹੈਪੀ ਰਿਟਰਨਸ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਰਮੇਸ਼ ਬਾਈ, ਕਹਾ ਹੈ ਸੋਨਲ ਮੋਦਾ ਨੇ। ਮੇ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਵਿਦ ਅ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ। ਬਹਿਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਅਬ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹਮਾਰੇ ਹੈ ਸ਼ਾਬਿਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼, ਯੈਸ ਸ਼ਾਬਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟਲੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਡੀਅਰ, absolutely Vaibhav is 15, a Bihari boy, and the way he's gifted in his batting, he says that he doesn't see who is the bowler, he wants to hit that ball which touches him. Allah Malik. Tomorrow again we all wish him Eid. Gujarat's Titans, it's gonna be hot. Shabia. ਸਮੀ ਇਹ ਜੋ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸਕੇ ਤੋਂ ਇਤਨੇ ਫੈਨਸ ਬੜ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਬ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸਕੀ ਇਸਕਾ ਮਾਲ, ਇਸਕੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਸਮ ਮੁਝੇ ਤੋਂ ਲਗਤਾ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਚੈਸਟ ਐਟ 15। ਜਿਤਨੀ ਉਸਕੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਸਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਗਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਊਂਗੀ। ਤੋ 15 ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ ਮੇ, ਤੋਬਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ।
4: ਤਰਵੀਨ ਜੀ, ਵੈਭਵ ਨੇ T20 ਮੈਂ ਏਕ ਲੀਗ ਮੈਂ ਸਬਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਕੇ ਲਗਾਨੇ ਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ 35 ਗੇਂਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਤਕ ਬਣਾਇਆ ਥਾ, ਔਰ ਯੇ ਸਬਸੇ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਤਕੋਂ ਮੈਂ ਸੇ ਏਕ ਹੈ। ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਥ T20 ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਮੈਂ 4 ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਕਰ ਲਗਾਨੇ ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ 4 ਛੱਕੇ ਲਗਾਨੇ ਵਾਲੇ ਯੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨੇ ਤੋੜੇ ਹੈ, ਔਰ ਅਭੀ ਤੋ ਇਨਕੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਅਭੀ ਤੋ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਯੇ ਤੋੜੇਂਗੇ। ਤਰਵੀਨ ਜੀ, ਆਜ ਰਮੇਸ਼ ਹਰੀਆ ਜੀ ਕਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਤੋ ਹਮਾਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀਓ ਸੇ ਭਰੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ।
0: ਮੰਜੁਲਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ, ਔਰ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਉਂ ਜੀ, ਆਪਨੇ ਮਦਰਾ ਕਾ ਵੀਕੈਂਡ ਕੋ 4 ਚਾਂਦ ਲਗਾ ਦੇ ਨੇ, ਕੈਸੇ ਪਰਫੈਕਟ ਬਨਾਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਹਾਂ ਜਾਣਾ ਜਹਾਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈਟ ਹੋਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ 35 ਗੇਂਦੋਂ ਮੇਂ ਸ਼ਤਕ ਬਣਾਇਆ ਥਾ, ਲਵ ਸੌਂਗਸ ਹੋਗੇ ਪੂਰੀ,
4: ਯੇ ਸਬਸੇ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਤਕੋਂ ਮੇਂ ਸੇ ਏਕ ਹੈ।
0: Music saath hi saath T20
4: ke pehle over mein 4 chhakke maar
0: kar
4: lagane wale, matlab 4 chhakke lagane wale
0: sold out na ho gaye concert,
4: pehle ballebaaz
0: abhi kare,
4: aise bahut se record inhone tode hain, aur abhi to inki umar hi kya hai, abhi to aur pata nahi kitne record ye todenge। 11:27
5: Priority Banking from Standard Chartered not only manages your wealth and legacy, Priority Banking from Standard Chartered connects you to investment opportunities across the world. Real global expertise and a wide range of investment solutions right here in Kenya. Now's your time for wealth. Join Priority Banking today and enjoy real returns and real peace of mind. Visit your nearest branch or speak to your relationship manager.
6: More of Kenya's premier Asian mix, East FM.

0: और रमेश हरिया के लिए ग्रीटिंग्स आती जा रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जिस जिसने भी भेजी हैं ग्रीटिंग्स। और शबीर अहमद,
1: सलाम और आदाब शहजादी साहिब और सबको। पहले तो ईद मुबारक सबको। और वो अभी रमेश हरिया का सुना है, मे अल्लाह सुब्हानहु व तआला गिव हिम अ लॉन्ग लाइफ, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे रमेश जी, मे द ऑलमाइटी ब्लेस यू।
0: आमीन आमीन, बहुत दुआओं के लिए शुक्रिया। सलीम मेहर,
2: रमेश जी, सलीम मेहर फ्रॉम लंदन। Can you please wish Ramesh Saab a very happy birthday with many more healthy ones to follow? May Allah give him a long life. Khuda Hafiz.
0: Dekha Ramesh Hariya, aapko log kitna appreciate karte hain. Sana Kana, happy birthday kaha hai. Meera Chavda, aapne good morning to you and your bemisal family. Wishing Ramesh Hariya very happy blessed birthday. God bless him. Meera Chavda. दीपक वडगामा, मैनी हैप्पी रिटर्न्स टू रमेश हरिया, बहुत शुक्रिया। समय बड़ी अजीब खबर मैं दे रही हूँ आपको। अजीब क्यों है समय, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया, तकसीम हो गए, दो भाई अलहदा हो गए, तो हर दो चार साल के बाद एक मुल्क से आता ये ऐलान कि हमने अपने नाम बदल दिए हैं, सड़कों के नाम बदल दिए, झीलों के नाम बदल दिए, नदियों के नाम बदल दिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा ही हुआ। अब वहां जमीन चार पांच पांच सूबे हैं, तो उनमें से एक सूबा है पंजाब। तो समझ वहां क्या हुआ, वहां फैसला हुआ कि पहले के नाम वापस ले आएंगे। पहले के नाम कैसे लेके आएंगे, क्योंकि उनका तो ताल्लुक हिंदुस्तान से है। नहीं, उन्होंने कहा 80 साल बाद। बहुत ही अच्छा फैसला है, मैं तो हैरान हूं किसने सोचा और क्यों किया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। 80 साल बाद फैसला किया है कि सूबे की सरकार ने कि इस्लामपुरा, समझ, पहले होता था कृष्ण नगर। सो पहले का जो नाम था ना वो वापस लाएंगे, इस्लामपुरा नहीं होगा। फिर मुस्तफाबाद धर्मपुरा हो था, वो वापस आ जाएगा धर्मपुरा पर। मस्जिद जो थी बाबरी मस्जिद, वो क्या होगी, संत नगर नहीं, बाबरी मस्जिद चौक संत नगर होगी। रहमान गली, एक गली थी रहमान गली, उसको अब राम गली कहते हैं कि हम हेरिटेज रिस्टोर करना चाहते हैं, हेरिटेज हमारी विरासत है। जो मौलाना जफर अली खान चौक, अब क्या होगा इसका नाम, पहले था लक्ष्मी चौक, लक्ष्मी हो जाएगा। लॉरेंस गार्डन्स, वो हो जाएगा बागे जिना। तो समझ, पहले बागे जिना था, फिर न जाने क्यों लॉरेंस गार्डन्स बना दिया। और बाबरी मस्जिद चौक जो है संत नगर है, पर यहां पर कहते हैं जैन मंदिर चौक भी हो सकता है। सो समझ, ये नाम वापस आ गए हैं 80 साल के बाद हिंदू नेम्स। देखते हैं कि ये रहता है कि नहीं, बात ये रहती है कि नहीं।

0: उसमें भी शेर का एक बार नम हो जाता है, तो इसके कई कारण हैं। ब्लड शुगर में भी होती है ये प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर भी हो तो न्यूरोलॉजिस्टिक भी प्रॉब्लम होती है। किसी किसी को वर्टिगो होता तब भी नोशिया रहता है। मैंने काफी ये कारण इसके पढ़े हुए हैं, पता नहीं मैं ठीक हूँ गलत हूँ ऋतु गुप्ता। हाँ एक और कारण ज्यादा, जिंक की भी कमी होती है ऋतु गुप्ता।
1: जी, अगर एक एक लेंगे आप सिम्टम को तो फिर तो कई बीमारियां हैं। मैंने कहा ये सारे सिम्टम्स जब इकट्ठे हों तो स्ट्रोक का है, ठीक है ना? 1 2 3 4 इकट्ठे हों। अच्छा, अब यहाँ पर हैं, कौन आए हैं? ये हैं हमारे TIA, किसी और ने भी कहा ट्रांजेमिक, आई थिंक दिस इज TIA, ट्रांजियंट इस्कीमिक अटैक। यस, इट हितेन हितेन फ्रॉम लंदन, करेक्ट। नसीम, आपने कहा थैंक यू सो मच। माई कंपनीज नेम इज दिस, फाउंडर ऑफ दिस। ओके, ऑल राइट, फाइन फाइन, बट यू गिव मी द नेम विच इज योर नेम। ओके, द सिम्टम्स जस्ट मैंशन विच आई बिन थिंकिंग इज मेयरली डायबिटीज हैज बीन एक्सट्रीमली यूजफुल। नसीम अमीन फ्रॉम मुम्बासा, आई एम ग्लैड। अगर कोई आपके आसपास भी ये बातें करे कि उनको ये सिम्टम्स हुए हैं तो यू कैन ऑलवेज एडवाइज देम, है ना?
2: Assalamualaikum, Praveen ji, Salim Meher from London. On Sunday, Bhima had his annual 15th dinner. Your article in the Bhima brochure was greatly appreciated. Members of the late Nasreen Mir, Bhatti family, Qureshi family, who have settled in the UK, were sending you lots of compliments. Even Shabir Saab was at the function. You really had a lovely musical evening and you were discussed quite a lot. Khuda hafiz.
1: Kya baat hai? Shabbi Salim Meher. सलीम मेहर ने सामिन, इन्होंने बीमा जो ब्रिटिश यहाँ से गए हुए हैं, ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीकन मुस्लिम्स, वहाँ पर एक छोटा सा इदारा खोला हुआ है। तो सलीम ने मुझे कहा अपने बारे में कुछ लिख दो, तो मैंने अपने बारे में कुछ तारीफें लिख दी थी इनके लिए, विच वर आई थिंक आई होप दे डिड प्रिंट दम इन द ब्रोशर। तो बिकॉज ऑफ दैट बातें हुई होंगी। थैंक यू सो मच सलीम, आई होप यू हैड। नज़र आ रहा है कि आपने बहुत सक्सेसफुल, आपके ये जो डिनर्स हैं लंचेस हैं बड़े सक्सेसफुल होते हैं। ओके, उमर फ्रॉम जर्मनी, एंड ऑल योर ब्यूटिफुल लिसनर्स को ईद मुबारक एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक ही इज इन जर्मनी, उमर पहले थे वो वहाँ पर। समझ, मैंने कहा कि मैंने हार और जीत के बारे में कुछ कहना है। डैश जाओ तो हार है, छोटा सा लफ्ज डालना है, डैश जाओ तो हार है और डैश लो तो जीत है, हार जीत। अब अगर आपको ये छोटा सा लफ्ज नहीं आता तो मैं आगे चलकर बताऊंगी कि किस तरह से शुरू होता है ये लफ्ज। सो डैश जाओ तो हार है लेकिन डैश लो तो जीत है। एक छोटा सा, दो लफ्ज़ हैं, एक पहले के साथ और एक दूसरे के साथ, दो छोटे छोटे लफ्ज़ हैं। पहले ट्राई करें, लेट मी सी कि किसको आता है।

0: What compassion, कहती हैं आरफा उंगा टरुंगाई से, कहती हैं इस गाने में जो compassion है ना, जो पहली बार मैंने ये गाना सुना था, आज भी वो आई महसूस मैं करती हूँ। और आरफा कहती हैं कि ये love in Simla जिसने नहीं देखी ना, please देखें, क्या फिल्म थी जॉय मुखर्जी एंड साधना की, कमाल की। इस गाने में एक कुत्ता ढूंढ रहा है जॉय मुखर्जी को, बर्फ में ढूंढ रहा है। वाह क्या बात है आरफा, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस विद अस। और सर मैं ये शेयर कर रही थी कि आपने वन नाइट ओनली आपने ये कॉन्सर्ट ज़रूर जाके देखनी है, कितने जनरेशंस ऑफ म्यूज़िक आप सुन पाएंगे। जो वो ज़माना था जब आप भी सुनते थे, आप जवान थे और आपके दिल के करीब वो गाने, तो ज़रूर देखिए। आर एन बी क्वीन ऑफ आर एन बी कैरन वाइट हैं, समय कहते हैं एक क्वीन और तीन किंग्स भी हैं एक नाइट में। ग्रैमी अवार्ड विनिंग सैक्सोफोन लेजेंड कर्क विलियम भी है। तो सॉन्ग्स करंटली रूलिंग आर प्लेलिस्ट्स, वो भी सुनाएंगे आपको। तो समय ticketyetu.com पर अपने टिकट्स को रिजर्व कर लें। अच्छा समय, जो मैंने अभी अभी कहा है ना आपको कि वो सिर्फ चिराग पटेल ने आंसर दिया है क्योंकि वो इतने सेवी हैं, एकदम से उन्होंने ढूंढ निकाला है जवाब। डैश जाओ तो हार है और डैश लो तो जीत है, और ये दो लफ्ज हैं, एक नहीं चलेगा ना, दो अल्फाज हैं क्योंकि देर आर टू ब्लैंक्स, अगर दो ब्लैंक्स हैं तो एक लफ्ज नहीं चलेगा।
1: आपने कहा ना दो छोटे वर्ड हैं, तो पहला आएगा डर जाओ तो हार है, तो दूसरा डट जाओ तो जीत है। ऋतु गुप्ता,
0: अब बात है, इट इज करेक्ट ये भी, हालांकि जो मेरे पास जवाब है वो एक और है, पर व्हेन आई हर्ड योर्स तो मैंने कहा वाह क्या बात है, बहुत अच्छे, लेकिन आपके पास डिफरेंट होगा जरूर।
2: परवीन, मैं फरखंदा शेख बोल रही हूँ, आपको बहुत बहुत ईद की मुबारक हो, लगता है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। कल मैंने आपको मिस किया है, लेकिन मैंने कहा कि आज आपको ईद मुबारक कह दूं। और परवीन, ऐसे कोई वक्त आए कि हम सब रलकर जो ईस्ट एफएम के सुनने वाले हैं वो भी हमें मिलें, हम भी उनको मिलें और हम अपनी खुशियां बांटें आपस में। अल्लाह हाफिज़।
0: गुड आइडिया फरखंदा, किसी दिन कोई ना कोई, इन फैक्ट सारे त्यौहार होने चाहिए, हमें मिलकर सेलिब्रेट करें, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में तो हम करते हैं, बाकी के भी प्रोग्रामों में करते हैं, तो फिर अगर इकट्ठे हो जाएं तो कितना ही अच्छा हो। वी शुड ट्राई, अगर कोई है ना इवेंट्स ऑर्गेनाइजर वो कर सकता है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है, सोनल मोदा ने कहा है। रमेश हरिया शुक्रिया, मैंने तस्वीर के साथ एक वॉइस मैसेज भी भेजा था। अच्छा,
3: आदाब परवीन जी, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझे आज से ठीक 4 साल पहले का वो दिन याद आ रहा है जब हम पहली बार मिले थे और आप सभी ने मेरा और अजय पाल जी का दिन स्पेशल बनाया था। भले ही आज सब अपनी जिंदगी में बिजी है, पर वो यादें आज भी मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आती है। आप सभी को बहुत मिस कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द सभी वापस मिलेंगे। फिर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद मेरे और अजय पाल जी के जन्मदिन पर शुभकामना भेजने के लिए। शुक्रिया, रमेश हरिया।
0: देखें इतनी दोस्ती है, और एक की बर्थडे एक दिन है, दूसरे दिन दूसरे की, बुध के दिन अजय पाल की थी और आज इनकी है। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स रमेश हरिया
4: जी। सबसे पहले तो मैं आई विश ए वेरी क्विक रिकवरी फॉर यू फ्रॉम फ्लू। यू नो व्हेन आई ओपन द रेडियो आई कुडंट रिकॉग्नाइज योर वॉइस, सो होप टुमारो योर वॉइस विल बी ओके। Second, today is Ramesh Hariya's birthday, so I wish a very happy birthday to him and may God bless him with long and happy life. And as you all know, today is a riddle day. So I'm asking a riddle from all the listeners. Ant kate to jai kehlati. Ant kate to jai kehlati. Jai jodo to banta nagar. Hai pehchan gulabi meri, yahan bane jantar mantar. Phir repeat kar rahi hu. Ant kate to jai kehlati. Ant kate to jai kehlati. Jai jodo to banta nagar. Hai pehchan gulabi meri, yahan bane jantar mantar. Ye kya hai? Thank you, Rekha Walia.
0: अच्छा किसी को पता है तो प्लीज बताएं रेखा वालिया की रिडल लग रही है बड़ी अच्छी और कोई इंटरेस्टिंग रिडल लग रही है मैं तो जरा कासिर मुझे नहीं पता ये क्या है जो इससे फैमिलियर हैं जवाब देंगे
5: नमस्कार परवीन जी जो दो वर्ड्स आपने पूछे हैं ना पहला वर्ड है हिम्मत और दूसरा होगा हौसला थैंक यू दिनेश पॉपर फ्रॉम सिडकप लंदन
0: पर दिनेश हमें तो फिट करने है ना सेंटेंस में आपने कहा है हिम्मत तो मैं कैसे लिखूंगी हिम्मत जाओ तोहार है मैंने कहा डैश जाओ तोहार है डैश लो तो जीत है यू सी यू हैव टू कीप द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इंटैक्ट अपना हम नहीं बना सकते ना बिल्कुल सिट कप कैंट से स्टिल इन जर्मनी उमर ओके ग्रेट और मिसेस धंजल
6: हेलो प्रवीण जी गुड मॉर्निंग मिसेस धंजल हियर प्रवीण जी आपके सवाल का जवाब है छोड़ दो तो हार है पकड़ लो तो जीत है थैंक यू वेरी मच टेक केयर गुड डे
0: भैया ये भी अच्छा है छोड़ दो तो हार है पकड़ लो तो जीत है वेरी गुड देखो ना ये इंटेलिजेंट लिसनर जो है ना ये अपनी इंटरप्रिटेशन कर देते हैं आई लव दैट मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जो रमेश हरिया को कहा है किसने नितेश मालडे ने बहुत अच्छे थैंक यू और यहाँ है मन
7: हेलो हमने कल स्टेशन पे नहीं मिले थे और अजय पाल की हैप्पी बर्थडे थी तो आज हम अजय पाल को भी हैप्पी बर्थडे हैव अ गुड डे एंजॉय एंड गुड हेल्थ हम विश करते हैं थैंक यू मनोहर पटेल फ्रॉम किसुमु
0: हमने ट्यूसडे अजय पाल को विश कर दिया था ट्यूसडे वाले दिन ओके भरत गंगाराम फ्रॉम लंदन कहते हैं रमेश शरिया का जन्मदिन प्लीज शुभकामनाएं मेरी जानिब से फ्रॉम लंदन जयपुर जवाब होगा रेखा वालिया का मुझे लग रहा था कुछ जय बाकी रह जाता है ना हाँ मुझे लगता है ये भरत गंगाराम राइट है अच्छा रेखा वालिया आप ही बताएंगे और चिराग पटेल ने कहा है गुलाब जामुन आई डाउट दैट अच्छा फिर आते हैं दिनेश शाह जयपुर And wish Ramesh Hariya very happy birthday. What about my voicemail? I sent you for Ajay Pal.
8: Praveen ji, अभी Ajay Pal ने कहा दुआ लो के क्या करेगा? इतनी दुआएं मिलती है तो क्या करेगा? अभी सुबह में ही आपने बोला था दुआएं का कुछ रंग नहीं होता, लेकिन दुआएं रंग ला सकती है. दिनेश शाह.
0: जी मैंने ये Tuesday के दिन भी सुनाया था. Even on Tuesday, but फिर सुना दिया. It's very good. Thank you. Rasila कहती हैं, लड़ जाओ तो जीत है, डर जाओ तो हार है. क्या बात है? Wonderful, Rasila. लड़ और डर. डर जाओ तो हार है, लड़ लो तो जीत है. लो था, okay? अच्छा, रेखा ने कहा है कि जयपुर correct answer है. जयपुर आई थिंक द आंसर इज जयपुर सोनल मोदा ने करेक्ट आंसर दिया है क्या बात है करेक्ट
9: इंडिया It's 12:24. Sunday sham, the set talur reminder. 6 to 8 baje, apna Punjab leke onda hai chatpate topics, spicy galla te full on Punjabi culture via vibes. Jive kende ne, jithe Punjabi, utthe masti pakki. Sa thoda hasna, thoda sochna, sab kuch milega sirf on East FM Kenya's premier Asian mix. Har aatbar, 6 to 8 baje, apna Punjab sponsored by the East African Ramgadia Board. Late na hovo, par Punjabi timing di ijazat hai.

0: अब कृष्ण सरोय ने कहा कि देखो आप बर्थडेज मना रहे हैं, ये बहुत जरूर आपके अहम लिसनर्स हैं रमेश हरिया और अजय पाल, तो ये क्या बात हुई बगैर केक के? और वो जोक नहीं कर रहे, कहते कि कहीं किसी जगह पर इकट्ठे हो, बड़ा सा केक हो, हम काटें सब इकट्ठे होकर। या एक्चुअली ऐसे ही तो ना बर्थडे, मैं पूछती हूँ रमेश हरिया और अजय पाल से कि वो क्या कहते हैं। ओके मंजुला विश्वकर्मा।
1: अरविंद जी आंसर तो जयपुर ही होगा, क्योंकि वहाँ पर ही जो इन्होंने उसे ही गुलाबी नगरी कहा जाता है और वहाँ ही जंतर मंतर है। और इसका होगा डर जाओ तो हार है, चुनौती लो तो जीत है।
0: मान लो तो जीत है, मान लो तो हार है, मान और ठान, यू सी बिकॉज दे राइम, इसलिए ये दोनों लिए। पर जिन्होंने और भी ऑल्टरनेटिव्स दिए मैंने उनको भी कबूल किया है, बहुत अच्छे आपके आंसर्स बड़े मुख्तलिफ थे, वंडरफुल। मंजुला विश्वकर्मा थी यहाँ पर। मिसेस धंजल, डियर अजय पाल जी एंड रमेश हरिया, हैप्पी बर्थडे विद अ लॉट ऑफ बेस्ट विशेस, मे वाहे गुरु ब्लेस यू बोथ, ये मिसेस धंजल ने कहा है। करना पड़ेगा कुछ ना कुछ इनकी बर्थडे का।

0: Kia gana tha, beautifully sung by Lata. अब बात करते हैं किसके साथ, रमेश हरिया जिनकी बर्थडे है।
1: आदाब परवीन जी, जरूर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। एक्चुअली कल 29 तारीख को हम लोग मिलने वाले थे, लेकिन अभी माता जी की तबीयत के हिसाब से हम लोग ने थोड़ा चेंज कर दिया है। करीबन एक दो हफ्ते में हम सब लोग फिर से ज़रूर मिलेंगे और केक काटेंगे। शुक्रिया, और शुक्रिया किशन सर जी का, अगर उनको भी फुर्सत है तो वो भी आ जावे, तो सब सभी साथ में मिलके केक काटेंगे। शुक्रिया रमेश सरिया।
0: रमेश, ये मिलना साथ में बस टेक्नोलॉजी की बात है कि हम मिल सकते हैं, इन व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए मिल सकते हैं, दैट्स इट। वरना तो फिजिकली प्रेजेंट होना बड़ा ही मुश्किल है।
2: हेलो सलाम परवीन जी। परवीन जी, सबसे पहले रमेश भाई को उनके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। मैं उनके लिए सिर्फ यही कहूंगा, भरी रहें जेबें आपकी, भरी रहें जेबें आपकी, हो मालोमाल खुशियों से भरी रहे जिंदगी आपकी, खुशियों से भरी रहे जिंदगी आपकी, मिलाते रहे हम सबको हर साल, मिलकर काटेंगे केक, मिलकर काटेंगे केक, बल्ले बल्ले हो जाएगी बेमिसाल दे श्रोताओं नाल। परवीन जी होंगे साडे चीफ गेस्ट, परवीन जी होंगे साडे चीफ गेस्ट, भंगड़ा पावांगे थोड़े सारे नाल। जन्मदिन दी रमेश भाई तुहानू बहुत बहुत मुबारक, साडे दिल दी गहराई दे नाल बहुत बहुत शुक्रिया। परवीन जी चलते चलते, दरअसल मैंने कहा था कि आप सबकी दुआएं हमें हिम्मत देती हैं एक साल तक कुछ कहने के लिए, कुछ बोलने के लिए, आप सबके साथ जुड़े रहने के लिए, तो इसे दूसरी तरफ ना लेके जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया परवीन जी, मुलाकात होगी जल्द, धन्यवाद।
0: अच्छा, पता है क्या, जब ये आपकी बर्थडे का सोच रहे थे, प्लान बनाना है, तब तो मैं ठीक थी, तब भी क्योंकि ईद आ गई थी बीच में, तो मैंने ज़रा खामोशी इख्तियार की, फिर तो खामोश रहना ही पड़ा, फ्लो ने खामोशी कर दिया हमें, लेकिन ज़रूर इकट्ठे होंगे।
3: शहजादी साहिबा, बहुत खूब, खूब पे खूब, क्या प्लेलिस्ट है आपकी, ज़बरदस्त। मैंने भी आपका आर्टिकल पढ़ा था, माशाल्लाह, इट्स रियली नाइस, एंड यू नो इट वाज प्रिंटेड, माशाल्लाह, यू नो we had a fantastic you know do there, and aapki playlist ki main mujhe more important kya baat hai, brilliant, god bless you.
0: Acha Shabir Ahmed, jab bhi main ye gana aage aapko sunane ja rahi hu, jab bhi ye gana mere samne hota hai, ya to din hota hai somvar ka, ya mangal ka hota hai, ya budh ka hota hai, आज के दिन में कभी मुझे ये गाना मिला ही नहीं है, आज मिला है।
4: जुमे का दिन, हाँ। यानी कि मैं और वो। शुक्रिया भाई मियां, तुमने जुमा जुमा

0: कल की मुलाकात का अमीर अली राना ऑफ कोर्स कल भी आप सुनेंगे विल बी वेटिंग फॉर यू टू जॉइन
1: शहजादी साहब शब्बीर ये मैंने अजय पाल को निवेश किया उनकी बिलेटेड बर्थडे बिकॉज़ आई वाज नॉट लिसनिंग मैं उनको मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला गिव हिम लॉन्ग लाइफ एंड अ वेरी हेल्थी वन बी ब्लेस्ड ये कह सकता हूँ हमेशा खुश रहो आप अजय जी बाय
0: बहुत अच्छे हो सकता है समिन हम क्या करें मेरे दिमाग में एक ख्याल आया आप सबकी तस्वीरें लेंगे देखते हैं क्या करती हूँ उसके साथ क्योंकि ये जब भी किसी की बर्थडे आए ना तो हमें पता नहीं होता कि वो कैसे दिखते हैं हम विश कर रहे होते हैं लेकिन पता नहीं वो कैसे दिखते हैं क्या करते हैं
2: This is East FM, Kenya's premier Asian mix. We unlocked Gavaa for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.

0: और समझ लव इन शिमला का जो मंजर मैंने आपको बताया था, अरफा ने कॉल किया, वो कहते हैं कि साधना को ढूंढ रहा था कुत्ता और जॉय मुखर्जी, मैंने उसको पलट ही दिया था। तो समझ, अब आगे देखते हैं कौन सा गाना आपके लिए है।
1: The singer, songwriter, and producer, the multiple Grammy nominee, the R&B queen, the superwoman, Karen White, live at the One Night Only Experience.
2: What's up, Kenya? This is your superwoman, Karen White. I cannot wait to see you.
1: Sunday, 31st of May, on the long Madaraka weekend. One night only, an exquisite night of culture, Afropop, jazz, and soul. You miss it, you regret the rest of your life. Yes. Tickets are selling out fast.
2: I'll be performing at the Sarat Expo Hall. Get your tickets, it's gonna be a vibe. See you there.
1: Grab yours now at ticketyettoo.com.

0: from Kenya, Asia, and around the world. This is East FM News, presented by Parveen Adam.
1: East FM pe jumerat ki khabrein, pehle khabron ki surkhiyan. 16 ladkiyon ki maut Gilgil ke school mein aag ki waardat. America ki mang Nairobi mein Ebola se peedit Amerikiyon ke liye center kholne ki. Aur Hamas ka ek aur commander Yahudi hamle mein jaan bahak. Khabrein tafseel se. Sadr William Ruto ne afsos ka izhar kiya hai Gilgil ki Utmishi Girls School mein lagi aag pe jisme 16 chhatrayein jaan se gayi. Rashtrapati ka kehna tha ki sara mulk unke gham mein sharik hai jinki betiyon ka nidhan ho gaya. 80 talibat zakhmi hui hain. सफीना पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि जब बजट की तैयारी की जाती है तो आवाम को मद्देनजर नहीं रखा जाता सरकार ने जून के आखिर तक 800 बिलियन शिलिंग कर्जों की सर्विस में अभी लगाने हैं इसीलिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं लॉ सोसाइटी ऑफ केन्या ने अमरीकी इंतजामिया की मजम्मत की है कि नैरोबी में ईबोला के अमरीकी मरीजों के लिए इलाज और क्वारंटीन का मरकज खोला जाए केन्या को अपनी जनता की सुरक्षा पर गौर करना चाहिए और किसी ईबोला के मरीज को दाखिल होने की इजाजत नहीं होनी चाहिए डीआर कोंगो में ईबोला के वायरस का फैलाव रोकने में दुश्वारी पैदा हो रही है जंग की वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबरा डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि खौफनाक हालात पैदा हो चुके हैं बीमारों को अलग रखना बॉम्ब्स के गिरते समय मुश्किल है हमास के फौजी विंग के कमांडर मोहम्मद ओडे को इजरायली फौज ने मार गिराया है ओडे से पहले जो सरबरा थे उनको भी इजरायली फौजी कार्रवाई में कत्ल कर दिया गया गजा की मंडी पे हमले में ओडे की बीवी और बच्चे भी हलाक हुए इंग्लैंड में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने महीने की पहली हड़ताल का ऐलान कर दिया है 15 जून से 19 जून तक डॉक्टर्स काम बंद रखेंगे तनख्वाहों में इजाफे की मांग पर नए ब्रिटिश हेल्थ सेक्रेटरी जेम्स मरे ने सख्ती से कहा है कि आप तनख्वाहों पर डॉक्टर की मांगों को पूरा नहीं करेंगे ये जायज नहीं डॉक्टर्स की तनख्वाहें 40,000 पाउंड से लेकर 76,000 पाउंड सालाना है चार वर्षों में डॉक्टर्स को कुल 33% ज्यादा तनख्वाहें दी गई हैं और मगरबी बंगाल के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 30 लाख बंगालियों को कैश मदद देने से रोक दिया है जो ममता बनर्जी के दौर में बेनिफिट्स पाते थे अधिकारी के मुताबिक ये 3 मिलियन शहरी मदद के मुस्तहिक नहीं हैं और कई तो भारतीय ही नहीं हैं ये थी आज की खबरें मैं हूं परवीन आदम
0: बेमिसाल अंदाज विद परवीन आदम दिस इज ईस्ट एफएम केन्याज़ प्रीमियर एशियन मिक्स इश्क़

0: 46 minutes past the hour of 5 and you're tuned to East FM, Kenya's premier Asian mix. This is The Rush with Vishal and hum Vaibhav Suryavanshi ke baare mein baat kar rahe the and we all know he's a superb batsman and one thing that I like about him is obviously 15 saal ke hain wo, but the one thing that I like about him is that, you know, he is apne sanskar nahi bhoolta banda. You know, I think that's very, very important. जब भी कोई बड़े प्लेयर से मिलते हैं या समवन एल्डर टू हिम दिस यस्टरडे अबाउट यस्टरडे आफ्टर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मैच एक्चुअली व्हेन द एंकर्स वर टॉकिंग अबाउट विद द प्लेयर्स एंड वैभव सूर्यवंशी केम ओवर देयर एंड उन्होंने पांव छुए अपने ही टच द फीट ऑफ द आई थिंक इट वाज सुनील गावस्कर वाज देयर एंड अजय जडेजा इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड साथ में एंकर थे जतिन सप्रू वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक एंकर्स एंड कमेंटेटर्स इन क्रिकेट एंड ही एक्चुअली स्टेप्ड असाइड सो दैट सो वैभव कैन एक्चुअली मीट दिस द लेजेंड्स बट वैभव एक्चुअली ऑल्सो टच्ड हिज फीट And I think sanskar kabhi nahi bhoolne chahiye. That is very, very important. So that's what I like about Vaibhav Suryavanshi the most.
1: East FM, Kenya's premier Asian mix. Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is, 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of The Star, right there where you are. 100,000 copies of The Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper. Because smart people...

ही रांझा प्लेइंग फॉर ईस्ट एफएम केनियस फ्रॉम एशियन मिक्स. दिस इज द सिटी लाइट्स बोलने वाला था मैं अभी, बट दिस इज अराश विद विशाल एंड राइट नाउ इट्स टाइम टू रिवील द आंसर फॉर द वन वर्ड ओनली चैलेंज. एंड आपका चैलेंज था थ्री क्वेश्चंस, व्हिच वन इज ट्रू एंड व्हिच वन इज फॉल्स. दंगल इज बेस्ड ऑन क्रिकेट, दैट इज फॉल्स. वी ऑल नो इट्स बेस्ड ऑन रेसलिंग. एंड प्रियंका चोपड़ा जोनस वॉन द मिस वर्ल्ड टाइटल बिफोर एक्टिंग इन बॉलीवुड. Absolutely correct. That is true. And Salman Khan has never hosted a reality TV show. That is false. He obviously, we all know, he has hosted Big Boss, Das Kadam, and many others. Lots of correct answers have come in. And fastest finger first, none other than Amar. You have given me the correct answer. We have Jayshree who has given me the correct answer. So has Neeraj. And aapne apna naam nahi diya, but your number ends in 624. You have also given me the correct answer. Thank you so much for your answers and for your company. I'm going to catch you tomorrow, same time from 4 p.m. onwards.